0: कुछ उनकी सुने कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: जी सामिन, ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और मैं यानी खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामिन को आदाब।
1: वसीमा जी, आज हमारे साथ एक नए साथी शामिल हो रहे हैं।
2: अरे तशरीफ लाए हैं खलील शेराजी, लेकिन किसी

0: लेकिन जो साउथ पंजाब है उसमें ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि वहाँ पे एक जिसको वो कहते हैं ना कि पेट्रियार्कल सोसाइटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पे मर्द अपनी मर्दानगी को इसमें शो करने के लिए तो ज़्यादातर घरेलू तशद्दुद के जो केसेज हैं वहाँ पे। और यही वजह है कि पंजाब हुकूमत ने जो अपना सबसे पहला जो सेंटर वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर बनाया था 2018 में, वो मुल्तान साउथ पंजाब पाकिस्तान में ही बनाया है।
1: बेहद हैरान कुन, सिर्फ पंजाब में और सिर्फ गुज़श्ता एक साल में 30,000, यकीन करना मुश्किल है।
2: हकीकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। सुलेमान साहब ने बताया कि बहुत से केसेस तो ना रिपोर्ट होते हैं और ना ही गिनती में आते हैं।
3: अरे वो क्यों भाई?
2: इसकी नफसियाती वजूहात हैं वसीमा साहिबा, जिनके बारे में मैंने माहिर नफसियात से पूछा जो खुशकिस्मती से इस ट्रेनिंग कोर्स में शरीक थी।
4: मेरा नाम आमना गनी है और मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ शेल्टर होम यानी कि दारुल अमान हाफिजाबाद में, जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब के अंडर आता है।
2: ठीक है, अब पंजाब की मैडम सूरत हाल क्या है? कहाँ पे लोग ज़्यादातर इसका शिकार होती हैं और वजूहात इसकी क्या हैं आपके ख्याल में, स्पेसिफिक एरियाज़ का?
4: इसमें मेरे ख्याल में पंजाब में ज़्यादा अगर हम वायलेंस का रेशो देखें तो रिपोर्ट ज़्यादातर ये होता है बड़े शहरों में, क्योंकि वहाँ पे लोगों को नॉलेज ज़्यादा होता है, लोगों को अवेयरनेस टॉक्स ज़्यादा हैं वहाँ पे ज़्यादा। बिग सिटीज़ में अवेयरनेस ज़्यादा होने की वजह से रिपोर्टिंग ज़्यादा है, लेकिन जो इसका शिकार ख़वातीन है वो बैकवर्ड एरियाज़ में ज़्यादा है, रिमोट एरियाज़ में ज़्यादा है, क्योंकि हमारी सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है हमारे ऊपर कि हमें ये बताया जाता है कि अपना घरेलू मैटर घर घर तक ही रखना है, इसको आगे आपने लेके नहीं जाना। लिहाजा ये बैकवर्ड और रिमोट एरियाज़ में है ज़रूर, लेकिन ये रिपोर्टिंग इसकी कम है, रिपोर्टिंग बिग सिटीज़ में ज़्यादा है।
1: बहुत अफसोस की बात है। वैसे शाद अजीम आबादी ने कहा था, खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है।
3: खदीजा, तशद्दुद जो चुपचाप बर्दाश्त करते हैं वो शायद समझते हैं कि घर की बात घर तक रहे तो अच्छा है।
1: यानी एक तरफ तशद्दुद करने की आदत और दूसरी जानिब सहने की आदत।
2: सिर्फ आदत ही नहीं, कुछ नफसियाती वजूहात भी हैं। अच्छा मैडम, आप चूंकि साइकोलॉजिस्ट हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सिंफ की बुनियाद पर तशद्दुद जो लोग करते हैं जब ये होता है, इसके पीछे नफसियाती अवामिल क्या हैं? कौन सी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान ये करने पर मजबूर होता है? मैं सहने वाले की बात नहीं कर रहा, जो कर रहा होता है उसकी।
4: अच्छा, इसमें जो हमारे शेल्टर होम में आते हैं उस पर बेसिकली मेरी जो एमफिल की रिसर्च है वो भी शेल्टर वुमेन पे है, यानी कि जो ख़वातीन हमारे पास शेल्टर लेती हैं उन पे होती हैं। तो बेसिकली इसके कुछ डेमोग्राफिक्स हैं जो मैंने रिसर्च भी किए हैं, बकायदा मेरी एमफिल की रिसर्च इस चीज़ पे थी। वो मर्द हज़रात जो ख़वातीन से दूर रहते हैं, किसी भी जॉब के सिलसिले में रहते हैं, किसी भी फॉर एग्जांपल उनका ताल्लुक़ किसी ऐसे डिपार्टमेंट से है कि वो उनको जॉब की वजह से कारोबार की वजह से साथ नहीं रहते, तो इन द मीनवाइल उनकी जो साइकोलॉजिकली उनकी डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि वो फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते, लिहाजा वो एक दूर रहने की वजह से उनकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस अगर हम करें तो वो फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू दोज मैन जो कि अपनी बीवी के साथ रह रहे हैं। तो जब कभी वो अपने काम से वापस आते हैं तो वो उनकी जो साइकी होती है वो उन्हें असर करती है और वो वायलेंस की तरफ जाते हैं। फिर उसमें कोर रीज़न ड्रग एडिक्शन की आती है, ड्रग जो जो हस्बैंड ड्रग लेते हैं वो भी अब्यूज़र्स होते हैं। फिर उसके अलावा कुछ चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस होते हैं, मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी ने बचपन में फेस किया है अब्यूज़ को तो वो बड़े होकर भी अब्यूज़र ही बनता है, तो ये पूरा एक साइकिल होता है। तो इसकी मे बी एक वो हम पढ़ते हैं साइकोडाइनमिक अप्रोच ना, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि उस मर्द को बचपन में उनके माँ बाप की तरफ से वायलेंस का शिकार हुआ हो या बुलिंग का शिकार हुआ हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके माइंड में बैठ गई हो और इस वजह से वो अब अपनी बीवी पे भी वायलेंस करता हो। और तीसरा एक सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव भी आता है, जो कि हमारा पावर एनालिसिस है कि हमारे यहाँ एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है एज अ होल, तो मेल की अपब्रिंगिंग ही इस तरह से की जाती है कि उसको फील होता है कि ही इज़ डोमिनेटिंग, ही शुड डोमिनेट हर वाइफ, उसने अपनी वाइफ को डोमिनेट करना है, लिहाजा एक सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव बन चुका है ये पेट्रियार्कल सोसाइटी का।
3: दुरुस्त कह रही हैं। वैसे मेरे ख्याल में इन सब की जड़ें पिदरशाही माशरे में काफ़ी गहराई तक व्यवस्थित हैं।
1: और अब हमें जापानी खातून के तासरा से भी आगाह कीजिए।
2: जी ज़रूर, ये खातून हैं उसामी मरी साहिबा, जो कि जायका की स्पेशलिस्ट के तौर पर पाकिस्तान में साल 2021 से 2023 तक काम करती रही हैं। वो ख्वातीन के तहफ़ के मराकज़ और पनागाहें बतौर एडवाइज़र देखती रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सिनफी तशद्दुद की शिकार ख्वातीन से बात करके वो हैरान रह गईं।
3: अच्छा खलील साहब, ये वही उसामी साहिबा हैं ना जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के मुतासरीन के लिए मंसूबे की मशीर थीं?
2: जी बिल्कुल वही हैं, वो अभी भी जायका में पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं।
5: はりその時にすごく驚いたのが、若い女性の被害者が結構多くて、でその方たちはまだ。
1: मुझे हैरत थी कि वहां काफी ज्यादा मुतासरीन नौजवान खवातीन थी, उनमें से कई अभी गैर शादीशुदा भी थी, लेकिन उन पर जबरदस्ती की शादी या वालिदैन की मर्जी की शादी मुसल्लत की जा रही थी, उन्हें वालिदैन के मुंतखब करदा शख्स से शादी करनी पड़ रही थी, उससे नहीं जिसे वो चाहती थी। नापसंदीदगी की वजह से उनमें से कई घरों से भाग गई। दूसरी तरफ ऐसी खवातीन भी थी जो पहले से शादीशुदा होने के बावजूद फरार हुईं। ऐसे मामलों में मैंने सुना कि भागने से पहले उन्हें फैसला करना पड़ता है कि आइंदा किससे शादी करेंगी। इससे मुझे इदराक हुआ कि पाकिस्तान में खवातीन के लिए शादी कितनी अहम है, और शादी के अलावा अमली तौर पर तकरीबन कोई मुतबादिल बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए ये बड़ी चौंका देने वाली हकीकत थी। कई केसेस ऐसे थे जहां वालिदैन ने कहा तुम्हें इसी शख्स से शादी करनी होगी, लेकिन खातून चूंकि किसी और को पसंद करती थी और वालिदैन के मुंतखब करदा शख्स से शादी नहीं करना चाहती थी, जबकि अपने पसंदीदा मर्द से शादी कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो लड़कियाँ घर से भागी। इनमें से कुछ खवातीन मुकाबलतन तालीम याफ्ता भी थी। मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि फिर भी वो अपने खानदानों या माशरे के दबाव से बच नहीं सकी।
2: उसामी मरी साहिबा ने बताया कि अक्सर खवातीन 19-20 साल की थी। मेरे ख्याल में इससे कम उम्री की शादी का पता चलता है।
1: जी, शादी अनमोल रिश्ता है, लेकिन कहते हैं ना हर काम की एक उम्र होती है।
3: भी शादी बजाते खुद तो बुरी नहीं, लेकिन अगर कम उम्री में हो, खासतौर पर जबरदस्ती से कराई जाए तो मसला है ना।
1: जी बिल्कुल, अगर कोई खातून या कोई और सिनफी तशद्दुद का शिकार है तो वो आखिर जाए कहाँ।
2: इसके बारे में मजीद तफसीलात तो हम अगले प्रोग्राम में बता सकेंगे, लेकिन फिलहाल मैं विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब की हेल्पलाइन का नंबर बता देता हूँ। ये नंबर है 1737। इसके अलावा उनके सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी उनसे रابطہ किया जा सकता है, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो सीधा आप उनके दफ्तर बजाते खुद जा भी सकते हैं।
1: जी, हेल्पलाइन का नंबर है 1737।
3: खलील साहब, आइंदा हमें ये भी बताना है कि यहाँ सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद की शिकार खवातीन की दादरसी कैसे की जाती है।
2: जी, अगले प्रोग्राम में ये सब बताएंगे, आप प्रोग्राम सुनना ना भूलिएगा।
3: और आज इसी रिपोर्ट की मुनासबत से गीत सुनवा रहे हैं जो 2024 के यौम खवातीन के मौके पर जारी किया गया था। उन्वान है बॉडी, इसे गुलकारा मालिया ने गाया है।
2: इस गाने का पैगाम है कि ये मेरा जिस्म है, बदकिस्मती है तुम्हारी कि मैं तुम्हारा खिलौना नहीं।
1: ये पैगाम खवातीन को उनकी कदर कीमत समझने की तरगीब देता है। उन्हें बताना चाहता है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकती हैं।
2: हमारी दुआ है कि यह पैगाम उन तमाम खवातीन तक पहुंचे जो अभी तक अपने बुनियादी हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं।
3: तो आइए ये गीत सुनते हैं।

0: पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं।
1: जी सामिन, आज की रिपोर्ट में हमने सिन्फी तशद्दुद के हकायक सुने, कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट?
0: हाँ सामिन, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा।
1: और आपने हमें अपनी आरा कैसे भिजवानी है इसका तरीकाकार आज बताते चलें।
0: जी, एक बार फिर दीवान खाना में अपना पैगाम, राय या खत भेजना चाहते हैं तो अपने वेब ब्राउजर में nhk.jp/urdu टाइप करें। खजा साहिबा, आपने गुज़श्ता हफ्ते इस तमाम तरीक़ेकार पर अमल करके एक ईमेल रवाना की थी, तो आज सामीन को बिल्कुल सादा अल्फाज में इसका दोबारा तरीका बताइए ना।
2: जरूर, क्यों नहीं,
1: सादगी से।
2: जी सादगी से ही बताऊंगी। मैंने सबसे पहले होम पेज nhk.jp/urdu खोला और शोज ऑन डिमांड में जाकर दीवान खाना के मेजबानों की तस्वीर ढूंढी, यानी अपनी
1: ऐनक लगा के कि वैसे
2: ऐनक के साथ असीमा जी। और दीवान खाना के थंबनेल यानी तस्वीर के छोटे वर्जन की बाएं जानिब बाकी तफसील के अलावा एक जुमला था, पैगामात यहाँ भेजे। मैंने फटाफट उस पर क्लिक कर दिया।
1: इस ऑप्शन पर फटाफट क्लिक करने से आप हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं वाले सफ़े पे पहुंच गई होंगी जरूर।
2: हाँ जी, उस पेज पर तस्वीर के नीचे दी गई हिदायत पढ़ने के बाद लिंक था फॉर्म की तरफ पढ़ें, उस लिंक पर क्लिक किया।
1: जी सामिन, लिंक था फॉर्म की तरफ बढ़ें।
2: बिल्कुल यही था। उस क्लिक के बाद पहली रसाई पर रजामंदी की तस्दीक वाला पेज खुला, जिसको पढ़कर कबूल है के ऑप्शन पर क्लिक किया और फिर आगे बढ़ने के लिए तीर के निशान पर क्लिक किया।
0: मैं यहाँ वजाहत करता चलूं कि इसके बाद हो सकता है कि नोट वाला पेज खुले, ऐसी सूरत में मंदरजा बाला से मुत्तफिक को मुंतखब करके बाएं जानिब वाले तीर के निशान पर क्लिक करें। अब एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपसे ये मालूमात मांगी जाएंगी, आपका उर्फी नाम यानी आपका निक नेम, आपका ईमेल एड्रेस और आपका पैगाम यानी मैसेज।
2: बिल्कुल, ये सब कुछ था। इन मालूमात को पुर करके मैंने पैगाम भेजा तो एक और सवाल आ गया।
1: वैसे खदीजा, उर्फी नाम लिखा क्या था? निकने
2: नहीं बताऊंगी।
1: अच्छा, सवाल के बारे में क्या बता रहे थे खलील सर?
0: सवाल ये होगा
1: कि क्या आप कोई वीडियो या तस्वीर भी साथ भेजना चाहते हैं या सिर्फ तहरीरी पैगाम काफी है? खदीजा ये बताएं कि सिर्फ मैसेज भेजना हो तो क्या करेंगे?
2: तब नहीं वाला ऑप्शन मुंतखब करें। तीर के निशान पर क्लिक करने से आपका पैगाम हम तक फटाफट पहुंच जाएगा।
0: यानी कि मैसेज आपने पहले ही लिख दिया होगा तो वो पहुंच जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आपने ढेर सारे मैसेजेस भेजने हैं सामिन कि आपको आज की रिपोर्ट कैसी लगी, बड़ी मेहनत की है।
0: इंतजार करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे होम पेज का एड्रेस एक बार फिर सुन लीजिए nhk.jp/urdu। इसके साथ ही अपने मेजबानों को अब इजाजत दीजिए।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानों का कोनिचिवा नमस्कार।
1: सभी साथियों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब और जापान में साइकिल से जुड़े ब्लू टिकट चालान पर एक रिपोर्ट।
0: रोहिणी जी, देखिए अभी जापान में लंबी छुट्टियों का सिलसिला रहा, आप कहीं घूमने गई थी क्या?
1: नहीं, ऐसी छुट्टियों में हर जगह भीड़भाड़ ही रहती है, इसलिए ज्यादा कहीं गए तो नहीं।
0: अच्छा।
1: लेकिन हाँ, एक दिन पार्क में मैंने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने जापानी एनिमेशन के किरदारों का वेश धारण किया हुआ था। शायद कोई मेलजोल का कार्यक्रम रहा होगा इन लोगों का, तो मैं उन लोगों को कुछ देर तक देखती रही। और ये वेशभूषा इन्होंने कहाँ से खरीदी होगी या फिर खुद बनाई थी क्या, सोचती रही।
0: अच्छा। हाँ, इसे कॉस्प्ले कहते हैं और इसकी धूम जापान तक ही सीमित नहीं है, दुनिया भर में कॉस्प्ले के आयोजन होने लगे हैं और भारत भी कहाँ दूर है।
1: अच्छा, ऐसा है क्या?
0: हाँ, और पता है इस साल वर्ल्ड कॉस्प्ले समिट में भारत की जोड़ी ने प्रथम स्थान हासिल किया। बहुत अच्छा कॉस्प्ले था उनका, हालांकि वे कौन से किरदार बने थे ये मैं नहीं कह सकती।
1: मैं तो खुद कभी हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन जो लोग करते हैं उनके शौक को सलाम है।
0: सही बात है। और श्रोताओं, अगर आपको भी कॉस्प्ले में रुचि है या जानना चाहते हैं कि ये कॉस्प्ले क्या है, तो हमारी वेबसाइट पर एक लघु वीडियो है एनिमे जापान 2026 में कॉस्प्लेयर्स की धूम। टोक्यो में इस वार्षिक एनिमे आयोजन में जापान और दुनिया भर के कॉस्प्लेयर्स ने हिस्सा लिया।
1: अच्छा, ये तो मैं भी देखना चाहूंगी।
0: हाँ, जरूर देखिए और फिर बताइए अपनी राय हमें।
1: जी।
0: और अब देखिए वक्त हो रहा है श्रोताओं के पत्र लेने का, तो शुरू करते हैं खतों का सिलसिला।
1: जी हाँ, तो सबसे पहले यह पत्र है मोहम्मद सादिक आजमी जी का। उन्होंने 12 अप्रैल के कार्यक्रम के बारे में लिखा है कि इस अंक में पत्रों को प्राथमिकता दी गई, यह सुखद एवं संतोषजनक है, यह क्रम जारी रहेगा यही आशा है। समय से पहले मौसम में बदलाव कोई आम बात नहीं है, जापान के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर गंभीरता से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम मनुष्य ही इसके मुख्य जिम्मेदार हैं। कारखानों से निकलने वाले हानिकारक धुएं, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, आधुनिक विकास के नाम पर फैक्ट्रियों से टनों टन पानी को दूषित करते कचरे प्रकृति के सभी नियमों को तार तार करते जा रहे हैं। ऐसी दशा में ये बदलाव स्वाभाविक है, आवश्यकता है इस ओर विशेष ध्यान देने की।
0: अच्छा, ये शायद उस अंक की बात करें जब हमने बात की थी ना कि समय से पहले ही इतनी गर्मी हो गई है, तो यही मोहम्मद जी की टिप्पणी है।
1: हाँ, आगे लिखते हैं कि भाई चिन्मय महतो जी रेडियो प्रदर्शनी के आयोजन में 1000 से अधिक रेडियो को एकत्रित कर इतिहास बना रहे हैं, हम उनके इस अनूठे कार्य हेतु बधाई प्रेषित करते हैं।
0: चिन्मय जी के संग्रह को देखने का तो रोहिणी मेरा भी बहुत मन है।
1: जी,
0: चिन्मय जी ने कहा था कि वो अपने संग्रह की तस्वीरें भेजना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो चिन्मय जी, ईमेल में फोटो अटैच करने की व्यवस्था जो है उपलब्ध है, आप वीडियो भी भेज सकते हैं, तो हमें जरूर भेजें।
1: जी, और मोहम्मद जी आपके पत्र के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि हर पृथ्वीवासी को अब प्रकृति के बदलावों की ओर संवेदनशील होकर अपने निजी स्तर पर कदम उठाने होंगे, तभी कोई बात बनेगी।
0: सही कहा। और अब देखिए ये अगला पत्र है RS विजय कुमार जी का। लिखते हैं, मेरे पूज्य पिताजी की तबीयत बिगड़ गई, ओहो, जो 92 वर्ष के हैं, मुझे उनके स्वास्थ्य संबंधी हालात पर ध्यान देना पड़ा, जिस कारण आप लोगों से पत्राचार करने में विलम्ब हुआ। हर शनिवार को प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य सरिता पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। साहित्य सरिता वास्तव में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसमें प्रसारित कहानियां जापानी समाज की एक प्रतिबिंब की तरह हमारे मन मस्तिष्क में समा जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गिनी चुनी 5-6 कहानियों को कई बार पुनः प्रसारण किया जा रहा है। आखिर कब तक हम उन कहानियों को सुनते रहेंगे? हम श्रोता भले ही बहुत पुराने हैं, जो 40-50 वर्षों से लगातार आपके कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नया सुनाइए। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहूंगा कि कि जापान रेलवे जर्नल जैसी सूचनाप्रद एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस को हिंदी सबटाइटल्स के जरिए सीधे पोस्ट करने के बजाय अगर वीडियो को हिंदी का स्वर देकर वाचन करें तो विषय वस्तु और बेहतरीन तरीके से श्रोताओं की समझ में आ जाएगी। हाल में मैंने हिंदी फेसबुक पेज पर जापान रेलवे जर्नल के अंतर्गत रेलवे एवं AI मास ट्रांस इनोवेशन 2025 प्रदर्शनी की संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से देखने का सुअवसर मिला। सचमुच ये प्रदर्शनी अपने आप में अनोखी थी। भविष्य में AI का सदुपयोग करते हुए रेलवे की मरम्मत, रख रखाव, लेवल क्रॉसिंग पर सुनिश्चित सुरक्षा तथा यात्रियों को त्वरित एवं बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने का जापान रेलवे कर्मचारियों और कंपनियों ने संकल्प लिया है।
1: विजय कुमार जी, आपके पिताजी का स्वास्थ्य अब बेहतर हो गया होगा, इसकी आशा करते हैं। आपने खुलकर अपने मन की बात हम तक पहुंचाई, इसके लिए धन्यवाद। साहित्य सरिता वास्तव में बहुत पसंद किया जाता है और हम चाहते हैं कि इसके तहत नई नई कहानियां आप तक पहुंचाएं। लेकिन असल में इसकी नई कड़ियों को बनाना बंद कर दिया जा चुका है, इसलिए पुराने अंक सुनवा रहे हैं।
0: जी हाँ, और नए अंक बनाना कब आरंभ होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आपकी और अन्य श्रोताओं की ये टिप्पणी हम अपने अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं ताकि उन्हें जानकारी हो जाए कि श्रोता कितने मन से कहानियों का इंतजार करते हैं। और जापान रेलवे जर्नल का आप पूरा आनंद ले रहे हैं, इसके लिए आभार। इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए और क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इसका सुझाव देने के लिए धन्यवाद। हम भी अपने स्तर पर इस मुद्दे पर विचार करना चाहेंगे।
1: अब अगला पत्र है प्रदीप बसाक जी का, पूर्व वर्धमान पश्चिम बंगाल से। लिखते हैं, 10 अप्रैल के फेसबुक पोस्ट पर देखा, जापान के कागावा प्रिफेक्चर के अंतर्गत स्थित शिशिजिमा द्वीप पर वसंत से लेकर ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ तक फैली फूलों की अद्भुत छटा वास्तव में प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। मेरा मत है, सबसे पहले यह पहल प्रकृति और पर्यटन के बीच एक संतुलित एवं सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती है। मितोयो शहर में सेतो अंतर्देशीय सागर की पृष्ठभूमि में सजी रंग बिरंगी फूलों की कालीन न केवल दर्शकों को आकर्षित करती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाती है। दूसरा, यह आयोजन हमें सिखाता है कि किस प्रकार योजनाबद्ध प्रयासों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के साथ एक छोटे से द्वीप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकता है। और तीसरा, पर्यटकों के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि यह दृश्य केवल देखने में ही सुंदर नहीं बल्कि मानसिक शांति और सुकून का भी स्रोत है। आज के व्यस्त जीवन में इस प्रकार के प्राकृतिक स्थल लोगों को आंतरिक संतुलन प्रदान करते हैं। यह दिखाता है कि प्रकृति के प्रति प्रेम, देखभाल और सही योजना से किस प्रकार असाधारण सौंदर्य का सृजन संभव है। आशा है कि भविष्य में भी यह सुंदरता बनी रहेगी और अधिक लोग इस अद्वितीय अनुभव का आनंद ले सकेंगे।
0: प्रदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रकृति को सहेज कर संजो कर रखने से असाधारण सौंदर्य का सृजन संभव है। अपने आसपास साफ सफाई रखना, फूल उगाना और अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट पेड़ पौधों और वनस्पतियों, जड़ी बूटियों को संजो कर रखने से उनका बड़ा महत्व है। इंसान भी प्रकृति का एक अंग है, एक हिस्सा है और हमें प्रकृति के सभी पहलुओं के साथ तालमेल बिठाकर ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो।
1: देखिए, अभी सादिक आजमी जी ने भी इसी की ओर इशारा किया था कि इंसान जब तक प्रकृति की अनदेखी करता रहेगा उसे इसके दुष्प्रभावों को झेलते रहना पड़ेगा। समय आ गया है कि अपने आसपास के नदी नालों, नहरों को कचरा मुक्त रखें और एक स्वस्थ वातावरण को जन्म दें।
0: बिल्कुल सही कहा रोहिणी जी आपने। और अब देखिए, वक्त हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो श्रोताओं नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में।
0: रोहिणी जी, ये बताइए कि साइकिल से आपकी कैसी कैसी यादें जुड़ी हुई हैं?
1: साइकिल का जिक्र होते ही बचपन की यादों का पिटारा खुल जाता है।
0: अच्छा,
1: मैं तो स्कूल साइकिल पर जाया

0: करती थी। पहले तो हाफ पैडल चलाना सीखा था, फिर अभ्यास करते करते आराम से सीट पर बैठ के साइकिल चलाने लग गई थी। कभी कभी तो साइकिल चलाने की धुन में घर लौटने में देर हो जाती थी और खूब डांट पड़ती थी।
1: हाँ अच्छा, वैसे भारत के शहरों में कार का चलन और सड़कों पर भीड़ बढ़ने के साथ साइकिल चलाना आजकल कम हो गया है, परंतु यहाँ जापान में तो आज भी साइकिल चलाई जाती है। असल में तो जापान में रहने वालों की दिनचर्या साइकिल के बिना अधूरी है। सुबह बच्चों को नर्सरी या डे केयर पहुंचाना हो, या आसपास से राशन पानी लाना हो, कई लोग ये सारे काम साइकिल से ही करते हैं। छुट्टी के दिन आप एक पूरे परिवार को अपनी अपनी साइकिल पर सवार होकर बाजार, पार्क, संग्रहालय या अन्य जगहों पर जाते देख सकते हैं, है ना?
0: जी, अरे मैं तो जापान आकर इतनी भांति भांति की साइकिल देखकर चौंक गई थी।
1: अच्छा।
0: जी, खासकर यहाँ की ममाचारी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मम्मी वाली साइकिल कह सकते हैं। साथ ही बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक साइकिल भी होती है। इन पर आगे और पीछे बच्चों को सुरक्षित बैठाने के लिए खास सीटें भी लगी होती हैं। ये साइकिलें ऊबड़ खाबड़ चढ़ाव या ढलान वाले रास्तों पर बड़ी आसानी से चल जाती हैं। यह सब देखकर मुझे यह एहसास हुआ था कि जापान ने तूफानी बुलेट ट्रेन भले ही चला ली है, पर जितेंशा यानी साइकिल की सवारी को भी संजो कर रखा है।
1: ये तो आपने खूब कहा, और साइकिल चलाने के फायदे भी तो बहुत हैं। देखिए, सेहत के लिए अच्छी है, पर्यावरण के लिए फायदेमंद है ये दो पहिए की साइकिल। पर सुनने वाले को ये तो बताइए कि आज हम साइकिल की बातें क्यों कर रहे हैं?
0: जी, अभी बताती हूँ। असल में जापान में साइकिल के चलन के साथ साथ बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण पिछले साल यह तय किया गया था कि साइकिल चलाने में लापरवाही को अब नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। इसलिए 1 अप्रैल से नया ब्लू टिकट चालान लागू किया गया है। अगर आप मोबाइल देखते हुए, हेडफोन लगाए हुए या छाता पकड़कर साइकिल चलाते हैं तो ब्लू टिकट मिलेगा और निर्धारित जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। इस नए ब्लू टिकट सिस्टम के तहत नियम उल्लंघन के स्तर के अनुसार 5,000 से 12,000 येन तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, यानी करीब 2,500 से 6,000 भारतीय रुपए। और सबसे बड़ी बात, अगर जुर्माना नहीं भरा तो आपराधिक केस भी दर्ज हो सकता है।
1: जी हाँ, मैं कुछ और नियम जोड़ दूँ इसमें। देखिए, जैसे ट्रैफिक लाइट की अनदेखी करने, बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करने और सिद्धांतिक रूप से फुटपाथ पर साइकिल चलाने पर भी ब्लू टिकट कट सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये नियम आपको क्यों बता रहे हैं, तो वो इसलिए कि जापान आने वाले सैलानियों के लिए भी किराए पर लेकर साइकिल चलाने की सुविधा है। अब अगर आप जापान घूमने आए तो आपको इन नियमों की जानकारी तो होनी चाहिए ना। बस इसीलिए इन सारे नियमों की पूरी जानकारी हमने NHK वर्ल्ड हिंदी की वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी डाल दी है।
0: जी, ये नियम सख्त लग सकते हैं, लेकिन ये सख्ती लोगों की जान बचाने और पैदल चलने वालों, खासकर कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ही है। सड़क दुर्घटना एक चिंता का विषय तो है। आगे और जो बता दूं कि हाल में आए NHK के रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के महीने में पूरे जापान में 2,147 टिकट जारी किए गए।
1: अच्छा, इतने सारे?
0: जी जी इसमें सबसे ज्यादा 846 ऐसे मामले थे जिसमें लोगों ने स्टॉप लाइन पर पुलिस की चेतावनी के बावजूद उन्हें उल्लंघित किया।
1: अच्छा।
0: जी, और वायला जी, 713 मामले स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए साइकिल चलाने वाले थे,
1: अच्छा,
0: और 298 मामले में ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी की गई थी।
1: अच्छा, तो ये है। तो श्रोताओं, अगर आप भी भविष्य में जापान घूमने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ की मशहूर बुलेट ट्रेन की सवारी और खूबसूरत मंदिरों के दर्शन के साथ साथ यहाँ की सड़कों पर साइकिल चलाने का अनुभव जरूर लें। बस ध्यान रहे कि ट्रैफिक नियमों का पालन पूरी तरह से हो और आपकी साइकिल की घंटी बेवजह ट्रिंग ट्रिंग ना करे।
0: अरे, हम लोगों ने तो साइकिल की घंटी के बारे में बताना ही भूल गए हम लोग।
1: जी जी बताइए।
0: जी,
1: हाँ।
0: यहाँ आपको साइकिल की घंटी भूले भटके ही सुनाई देती है। फुटपाथ पर पहला अधिकार पैदल चलने वालों का होता है और उन्हें हटाने के लिए घंटी बजाना बहुत ही असभ्य माना जाता है।
1: अक्सर सुनाई नहीं देती है ना।
0: जी
1: बहुत
0: बिल्कुल।
1: कम होता है ना
0: हाँ,
1: कि कोई बजा रहा हो घंटी। हाँ।
0: मैंने तो कभी भी नहीं सुना।
1: अच्छा।
0: धीमी गति में नजदीक जाकर अगर थोड़ा सुमिमा सेन

0: समाचारों का इंतजार रहेगा।
1: आइए अब साइकिल से ही जुड़ा एक गीत सुनते हैं। शीर्षक है जितेंद्र शाह यानी साइकिल, और गाया है जूडी एंड मैरी ग्रुप ने।

0: अब समय हो रहा है दोस्तों आपसे इजाजत लेने का, तो फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को
1: और रोहिणी रमन को।
0: सायोनारा, नमस्कार।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानों का कोनिचिवा नमस्कार।
1: सभी साथियों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब और जापान में साइकिल से जुड़े ब्लू टिकट चालान पर एक रिपोर्ट।
0: रोहिणी जी, देखिए अभी जापान में लंबी छुट्टियों का सिलसिला रहा, आप कहीं घूमने गई थी क्या?
1: नहीं, ऐसी छुट्टियों में हर जगह भीड़भाड़ ही रहती है, इसलिए ज्यादा कहीं गए तो नहीं।
0: अच्छा,
1: लेकिन हाँ, एक दिन पार्क में मैंने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने जापानी एनिमेशन के किरदार

0: का वेश धारण किया हुआ था, शायद कोई मेलजोल का कार्यक्रम रहा होगा इन लोगों का। तो मैं उन लोगों को कुछ देर तक देखती रही और ये वेशभूषा इन्होंने कहाँ से खरीदी होगी या फिर खुद बनाई थी क्या, सोचती रही।
1: अच्छा, हाँ, इसे कॉस्प्ले कहते हैं और इसकी धूम जापान तक ही सीमित नहीं है, दुनिया भर में कॉस्प्ले के आयोजन होने लगे हैं और भारत भी कहाँ दूर है।
0: अच्छा, ऐसा है क्या?
1: हाँ, और पता है इस साल वर्ल्ड कॉस्प्ले समिट में भारत की जोड़ी ने प्रथम स्थान हासिल किया। बहुत अच्छा कॉस्प्ले था उनका, हालांकि वे कौन से किरदार बने थे ये मैं नहीं कह सकती।
0: मैं तो खुद कभी हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन जो लोग करते हैं उनके शौक को सलाम है।
1: सही बात है। और श्रोताओं, अगर आपको भी कॉस्प्ले में रुचि है या जानना चाहते हैं कि ये कॉस्प्ले क्या है, तो हमारी वेबसाइट पर एक लघु वीडियो है, एनिमे जापान 2026 में कॉस्प्लेयर्स की धूम। टोक्यो में इस वार्षिक एनिमे आयोजन में जापान और दुनिया भर के कॉस्प्लेयर्स ने हिस्सा लिया।
0: अच्छा, ये तो मैं भी देखना चाहूंगी।
1: हाँ, जरूर देखिए और फिर बताइए अपनी राय हमें।
0: जी,
1: और अब देखिए वक्त हो रहा है श्रोताओं के पत्र लेने का, तो शुरू करते हैं खतों का सिलसिला।
0: जी हाँ, तो सबसे पहले यह पत्र है मोहम्मद सादिक आजमी जी का। उन्होंने 12 अप्रैल के कार्यक्रम के बारे में लिखा है कि इस अंक में पत्रों को प्राथमिकता दी गई, यह सुखद एवं संतोषजनक है, यह क्रम जारी रहेगा यही आशा है। समय से पहले मौसम में बदलाव कोई आम बात नहीं है, जापान के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर गंभीरता से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम मनुष्य ही इसके मुख्य जिम्मेदार हैं। कारखानों से निकलने वाले हानिकारक धुएं, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, आधुनिक विकास के नाम पर फैक्ट्रियों से टनों टन पानी को दूषित करते कचरे प्रकृति के सभी नियमों को तार तार करते जा रहे हैं। ऐसी दशा में ये बदलाव स्वाभाविक है, आवश्यकता है इस ओर विशेष ध्यान देने की।
1: अच्छा, ये शायद उस अंक की बात करें जब हमने बात की थी ना कि समय से पहले ही इतनी गर्मी हो गई है, तो यही मोहम्मद जी की टिप्पणी है।
0: हाँ, आगे लिखते हैं कि भाई चिन्मय महतो जी रेडियो प्रदर्शनी के आयोजन में 1000 से अधिक रेडियो को एकत्रित कर इतिहास बना रहे हैं, हम उनके इस अनूठे कार्य हेतु बधाई प्रेषित करते हैं।
1: चिन्मय जी के संग्रह को देखने का तो रोहिणी मेरा भी बहुत मन है।
0: जी,
1: चिन्मय जी ने कहा था कि वो अपने संग्रह की तस्वीरें भेजना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो चिन्मय जी, ईमेल में फोटो अटैच करने की व्यवस्था जो है उपलब्ध है, आप वीडियो भी भेज सकते हैं तो हमें जरूर भेजें।
0: जी, और मोहम्मद जी आपके पत्र के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि हर पृथ्वीवासी को अब प्रकृति के बदलावों की ओर संवेदनशील होकर अपने निजी स्तर पर कदम उठाने होंगे, तभी कोई बात बनेगी।
1: सही कहा। और अब देखिए ये अगला पत्र है R.S. विजय कुमार जी का। लिखते हैं, मेरे पूज्य पिताजी की तबीयत बिगड़ गई, ओहो, जो 92 वर्ष के हैं। मुझे उनके स्वास्थ्य संबंधी हालात पर ध्यान देना पड़ा, जिस कारण आप लोगों से पत्राचार करने में विलम्ब हुआ। हर शनिवार को प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य सरिता पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। साहित्य सरिता वास्तव में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसमें प्रसारित कहानियां जापानी समाज की एक प्रतिबिंब की तरह हमारे मन मस्तिष्क में समा जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गिनी चुनी 5-6 कहानियों को कई बार पुनः प्रसारण किया जा रहा है। आखिर कब तक हम उन कहानियों को सुनते रहेंगे? हम श्रोता भले ही बहुत पुराने हैं, जो 40-50 वर्षों से लगातार आपके कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नया सुनाइए। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहूँगा कि जापान रेलवे जर्नल जैसी सूचनाप्रद एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस को हिंदी सबटाइटल्स के जरिए सीधे पोस्ट करने के बजाय अगर वीडियो को हिंदी का स्वर देकर वाचन करें तो विषय वस्तु और बेहतरीन तरीके से श्रोताओं की समझ में आ जाएगी। हाल में मैंने हिंदी फेसबुक पेज पर जापान रेलवे जर्नल के अंतर्गत रेलवे एवं AI मास ट्रांस इनोवेशन 2025 प्रदर्शनी की संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से देखने का सुअवसर मिला। सचमुच ये प्रदर्शनी अपने आप में अनोखी थी। भविष्य में AI का सदुपयोग करते हुए रेलवे की मरम्मत, रख रखाव, लेवल क्रॉसिंग पर सुनिश्चित सुरक्षा तथा यात्रियों को त्वरित एवं बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने का जापान रेलवे कर्मचारियों और कंपनियों ने संकल्प लिया है।
0: विजय कुमार जी, आपके पिताजी का स्वास्थ्य अब बेहतर हो गया होगा, इसकी आशा करते हैं। आपने खुलकर अपने मन की बात हम तक पहुंचाई, इसके लिए धन्यवाद। साहित्य सरिता वास्तव में बहुत पसंद किया जाता है और हम चाहते हैं कि इसके तहत नई नई कहानियां आप तक पहुंचाएं। लेकिन असल में इसकी नई कड़ियों को बनाना बंद कर दिया जा चुका है, इसलिए पुराने अंक सुनवा रहे हैं।
1: जी हाँ, और नए अंक बनाना कब आरंभ होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आपकी और अन्य श्रोताओं की ये टिप्पणी हम अपने अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं ताकि उन्हें जानकारी हो जाए कि श्रोता कितने मन से कहानियों का इंतजार करते हैं। और जापान रेलवे जर्नल का आप पूरा आनंद ले रहे हैं, इसके लिए आभार। इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए और क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इसका सुझाव देने के लिए धन्यवाद। हम भी अपने स्तर पर इस मुद्दे पर विचार करना चाहेंगे।
0: अब अगला पत्र है प्रदीप बसाक जी का, पूर्व वर्धमान पश्चिम बंगाल से। लिखते हैं, 10 अप्रैल के फेसबुक पोस्ट पर देखा, जापान के कागावा प्रिफेक्चर के अंतर्गत स्थित शिशिजिमा द्वीप पर वसंत से लेकर ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ तक फैली फूलों की अद्भुत छटा वास्तव में प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। मेरा मत है, सबसे पहले यह पहल प्रकृति और पर्यटन के बीच एक संतुलित एवं सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती है। मितोयो शहर में सेतो अंतर्देशीय सागर की पृष्ठभूमि में सजी रंग बिरंगी फूलों की कालीन न केवल दर्शकों को आकर्षित करती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाती है। दूसरा, यह आयोजन हमें सिखाता है कि किस प्रकार योजनाबद्ध प्रयासों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के साथ एक छोटे से द्वीप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकता है। और तीसरा, पर्यटकों के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि यह दृश्य केवल देखने में ही सुंदर नहीं बल्कि मानसिक शांति और सुकून का भी स्रोत है। आज के व्यस्त जीवन में इस प्रकार के प्राकृतिक स्थल लोगों को आंतरिक संतुलन प्रदान करते हैं। यह दिखाता है कि प्रकृति के प्रति प्रेम, देखभाल और सही योजना से किस प्रकार असाधारण सौंदर्य का सृजन संभव है। आशा है कि भविष्य में भी यह सुंदरता बनी रहेगी और अधिक लोग इस अद्वितीय अनुभव का आनंद ले सकेंगे।
1: प्रदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रकृति को सहेज कर संजो कर रखने से असाधारण सौंदर्य का सृजन संभव है। अपने आसपास साफ सफाई रखना, फूल उगाना और अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट पेड़ पौधों और वनस्पतियों, जड़ी बूटियों को संजो कर रखने से उनका बड़ा महत्व है। इंसान भी प्रकृति का एक अंग है, एक हिस्सा है और हमें प्रकृति के सभी पहलुओं के साथ तालमेल बिठाकर ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो।
0: देखिए, अभी सादिक आजमी जी ने भी इसी की ओर इशारा किया था कि इंसान जब तक प्रकृति की अनदेखी करता रहेगा उसे इसके दुष्प्रभावों को झेलते रहना पड़ेगा। समय आ गया है कि अपने आसपास के नदी नालों, नहरों को कचरा मुक्त रखें और एक स्वस्थ वातावरण को जन्म दें।
1: बिल्कुल सही कहा रोहिणी जी आपने। और अब देखिए, वक्त हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो श्रोताओं नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में।
1: रोहिणी जी, ये बताइए कि साइकिल से आपकी कैसी कैसी यादें जुड़ी हुई हैं?
0: साइकिल का जिक्र होते ही बचपन की यादों का पिटारा खुल जाता है।
1: अच्छा,
0: मैं तो स्कूल साइकिल पर जाया करती थी। पहले तो हाफ पैडल चलाना सीखा था, फिर अभ्यास करते करते आराम से सीट पर बैठ के साइकिल चलाने लग गई थी। कभी कभी तो साइकिल चलाने की धुन में घर लौटने में देर हो जाती थी और खूब डांट पड़ती थी।
1: हाँ, अच्छा। वैसे भारत के शहरों में कार का चलन और सड़कों पर भीड़ बढ़ने के साथ साइकिल चलाना आजकल कम हो गया है, परंतु यहाँ जापान में तो आज भी साइकिल चलाई जाती है। असल में तो जापान में रहने वालों की दिनचर्या

0: दिनचर्या साइकिल के बिना अधूरी है। सुबह बच्चों को नर्सरी या डे केयर पहुंचाना हो या आसपास से राशन पानी लाना हो, कई लोग ये सारे काम साइकिल से ही करते हैं। छुट्टी के दिन आप एक पूरे परिवार को अपनी अपनी साइकिल पर सवार होकर बाजार, पार्क, संग्रहालय या अन्य जगहों पर जाते देख सकते हैं, है ना
1: जी। अरे मैं तो जापान आकर इतनी भांति भांति की साइकिल देखकर चौंक गई थी।
0: अच्छा
1: जी, खासकर यहाँ की ममाचारी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मम्मी वाली साइकिल कह सकते हैं। साथ ही बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक साइकिल भी होती है। इन पर आगे और पीछे बच्चों को सुरक्षित बैठाने के लिए खास सीटें भी लगी होती हैं। ये साइकिलें ऊबड़ खाबड़ चढ़ाव या ढलान वाले रास्तों पर बड़ी आसानी से चल जाती हैं। यह सब देखकर मुझे यह एहसास हुआ था कि जापान ने तूफानी बुलेट ट्रेन भले ही चला ली है, पर जितेंशा यानी साइकिल की सवारी को भी संजो कर रखा है।
0: ये तो आपने खूब कहा। और साइकिल चलाने के फायदे भी तो बहुत हैं। देखिए, सेहत के लिए अच्छी है, पर्यावरण के लिए फायदेमंद है ये दो पहिए की साइकिल। पर सुनने वालों को ये तो बताइए कि आज हम साइकिल की बातें क्यों कर रहे हैं।
1: जी, अभी बताती हूँ। असल में जापान में साइकिल के चलन के साथ साथ बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण पिछले साल यह तय किया गया था कि साइकिल चलाने में लापरवाही को अब नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। इसलिए 1 अप्रैल से नया ब्लू टिकट चालान लागू किया गया है। अगर आप मोबाइल देखते हुए, हेडफोन लगाए हुए या छाता पकड़कर साइकिल चलाते हैं तो ब्लू टिकट मिलेगा और निर्धारित जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। इस नए ब्लू टिकट सिस्टम के तहत नियम उल्लंघन के स्तर के अनुसार 5,000 से 12,000 येन तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, यानी करीब 2,500 से 6,000 भारतीय रुपए। और सबसे बड़ी बात, अगर जुर्माना नहीं भरा तो आपराधिक केस भी दर्ज हो सकता है।
0: जी हाँ, मैं कुछ और नियम जोड़ दूं इसमें। देखिए, जैसे ट्रैफिक लाइट की अनदेखी करने, बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करने और सिद्धांतिक रूप से फुटपाथ पर साइकिल चलाने पर भी ब्लू टिकट कट सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये नियम आपको क्यों बता रहे हैं, तो वो इसलिए कि जापान आने वाले सैलानियों के लिए भी किराए पर लेकर साइकिल चलाने की सुविधा है। अब अगर आप जापान घूमने आए तो आपको इन नियमों की जानकारी तो होनी चाहिए ना। बस इसीलिए इन सारे नियमों की पूरी जानकारी हमने NHK वर्ल्ड हिंदी की वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी डाल दी है।
1: जी, ये नियम सख्त लग सकते हैं, लेकिन ये सख्ती लोगों की जान बचाने और पैदल चलने वालों, खासकर कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ही है। सड़क दुर्घटना एक चिंता का विषय तो है। आगे और जो बता दूं कि हाल में आए NHK के रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के महीने में पूरे जापान में 2,147 टिकट जारी किए गए।
0: अच्छा, इतने सारे?
1: जी, इसमें सबसे ज्यादा 846 ऐसे मामले थे जिसमें लोगों ने स्टॉप लाइन पर पुलिस की चेतावनी के बावजूद उन्हें उल्लंघित किया।
0: अच्छा
1: जी। और वायला जी, 713 मामले स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए साइकिल चलाने वाले थे।
0: अच्छा।
1: और 298 मामले में ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी की गई थी।
0: अच्छा, तो ये है। तो श्रोताओं, अगर आप भी भविष्य में जापान घूमने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ की मशहूर बुलेट ट्रेन की सवारी और खूबसूरत मंदिरों के दर्शन के साथ साथ यहाँ की सड़कों पर साइकिल चलाने का अनुभव जरूर लें। बस ध्यान रहे कि ट्रैफिक नियमों का पालन पूरी तरह से हो और आपकी साइकिल की घंटी बेवजह ट्रिंग ट्रिंग ना करे।
1: अरे, हम लोगों ने तो साइकिल की घंटी के बारे में बताना ही भूल गए हम लोग।
0: जी जी, बताइए
1: जी। हाँ। यहाँ आपको साइकिल की घंटी भूले भटके ही सुनाई देती है। फुटपाथ पर पहला अधिकार पैदल चलने वालों का होता है और उन्हें हटाने के लिए घंटी बजाना बहुत ही असभ्य माना जाता है।
0: अक्सर सुनाई नहीं देती है ना।
1: जी,
0: बहुत कम होता है ना। हाँ। कि कोई बजा रहा हो घंटी। हाँ।
1: मैंने तो कभी भी नहीं सुना।
0: अच्छा।
1: धीमी गति में नजदीक जाकर अगर थोड़ा सुमिमा सेन यानी माफ कीजिए बोलना ही काफी होता है और आपको रास्ता मिल जाएगा।
0: हाँ, ये बात तो आपने सही कही। तो रोहिणी जी, आप चला भी रही है ना साइकिल जापान में?
1: हाँ, मैं तो चलाती हूँ, मेरे आसपास के काम के लिए बहुत ही जरूरी है।
0: ठीक है, तो हमें विश्वास है श्रोताओं कि आपको जापान में साइकिल चलाने के विषय में काफी जानकारी मिल गई होगी। और अब हम जानना चाहेंगे कि साइकिल से आपकी कैसी यादें जुड़ी हुई हैं, तो संदेश भेजकर हमें बताना ना भूलें। हमें आपके संदेशों और

0: अब समय हो रहा है दोस्तों आपसे इजाजत लेने का, तो फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को
1: और रोहिणी रमन को
0: सायोनारा, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना के सामीन को आदाब। आज हम गुज़श्ता हफ्ते नशेकरदा रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा नशे करेंगे।
0: पहले तो रिपोर्ट के गुज़श्ता हिस्से का मुख्तसर तारीफ मुझसे सुन लीजिए।
2: गुज़श्ता हफ्ते हमने जिक्र किया था कि अवाखिर अप्रैल में पाकिस्तान से महकमा समाजी बहबूद हुकूमत पंजाब में सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद के मसले से निमटने वाले 11 अफसरान जापान बैन अल-अक़वामी तआवुन एजेंसी जायका के ज़ेर-ए-एहतमाम ट्रेनिंग कोर्स में शिरकत के लिए जापान आए थे।
1: जी सामिन, आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते हमने जाना कि जापान और पाकिस्तान दोनों मिलकर पाकिस्तान में सिन्फी तशद्दुद से निमटने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं।
0: और रिपोर्ट से हमें पता चला कि मुतासरीन के आदाद शुमार क्या हैं और सिन्फी तशद्दुद की समाजी और नफसियाती वजूहात क्या हैं। और अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसी मौजू को आगे कैसे बढ़ाएंगे खलील साहब।
2: जी बिल्कुल, आज इस दूसरे हिस्से में सिन्फी तशद्दुद के मुतासरीन की इमदाद के हवाले से हम बात करेंगे। तो राबिया उस्मान साहिबा जो हैं वो लाहौर की डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, वो भी जायका के ज़ेर-ए-एहतमाम इस तरबियती कोर्स में शरीक थीं। तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि सिन्फी तशद्दुद से मुतासरा मर्द या खातून उनके इदारे से राबता कैसे कर सकती है और ऐसे अफराद को उनका इदारा क्या मदद फराहम करता है। तो उन्होंने मुझे बताया,
3: हमारा जो सेंटर है वो वॉक इन सेंटर है 9 बजे से लेके 5 बजे तक, और वो उनको किसी पेपर या अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मुसीबत का शिकार है तो वो हमारे दफ्तर आए और हमारी पूरी टीम है वो अपना मसला बताए और हम साथ ही उनका काम टेकअप कर सकते हैं। सर्विसेज जो है हमारी वो ये हैं कि उसमें सबसे पहले काउंसलिंग है, उनको उनके राइट्स के बारे में बताया जाता है। अगर उनकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उनको फ़ौरन जो है मेडिकल लीगल एग्ज़ाम है, FIR रजिस्ट्रेशन है, फ़र्स्ट एड है, वो चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो भी तशद्दुद का शिकार ख़वातीन को मदद चाहिए होती है, जैसे उसको उसके कानूनी राइट्स का बताना है, कानूनी हकूक़ का बताना है, वो हमारे लिए हमारे पास वकील मौजूद हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो उनका इनिशियल उसका सेशन करती हैं कि क्या ये बहुत डिप्रेस तो नहीं है, क्या ये अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगी, क्या ये फैसला लेने की पोजिशन में हैं। तो वो सब इनिशियल जितनी भी सर्विसेज हैं साइकोलॉजिस्ट की, लॉयर की, काउंसलर की, वो सब उसको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर उसको शेल्टर चाहिए, रहने के लिए महफूज जगह चाहिए, तो उसके लिए हम उसको शेल्टर में भी रेफर करते हैं। और हमारा एक 1737 हेल्पलाइन है।
2: अच्छा।
3: और उस पर कॉल करती हैं वो, और वो जो भी मशवरा है, काउंसलिंग है, एडवाइस है, उन्होंने अपना मसला शेयर करना है और पूछना है कि हम क्या कर सकते हैं, तो वो कंप्लीट गाइडेंस उनको हम टेलीफोन कॉल पे भी दे देते हैं।
0: भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इतना सारा ख्याल रखा जाता है। अब खलील साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि इसकी फीस भला कितनी होगी, इतने सारे मशवरे हैं।
2: कैसी फीस मुहतरमा भाई, वो ये तमाम खिदमात मुफ्त फराहम करते हैं, चाहे मुतासरा खातून माशी तौर पर कमज़ोर हो या ना हो।
0: अच्छा
1: जी, चले ये मसला तो हल हो गया, लेकिन हमारे ख्याल में एक और मसला, बल्कि मेरे ख्याल में एक और मसला मौजूद है।
0: वो क्या खदीजा?
1: जब ये मुतासरा फर्द या खातून जो भी हैं वो फ़ोन करे, तो ये भी तो हो सकता है और मुमकिन है कि तशद्दुद करने वाला शख्स या कोई और सुन ले, इससे तो मसला पैदा हो सकता है।
2: इस हवाले से मैंने राबिया साहिबा से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लोग एक ऐप बना रहे हैं जिसके तवसुत से मुतासरा खातून अब चैट के ज़रिए भी उनसे राबता कर सकती हैं, तो ताकि कोई उनकी आवाज़ ना सुन सके और वो अपना मसला भी पहुंचा दें।
0: हाँ, ये भी अच्छा तरीका है और अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे मुझे ये बताइए कि पनागाह में उन्हें किस तरह की सहूलियात मिलती हैं। असल में मेरा ख्याल है कि जिस्मानी या जहनी तशद्दुद किसी भी इंसान को बड़ा मुतासिर करता है और मुतासरा ख़वातीन जो हैं उनका माहरीन की ज़ेर निगरानी ख्याल रखा जाना चाहिए।
2: जी दुरुस्त कहा वसीमा साहब आपने। मैंने चीफ साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफसियात से पूछा कि मुतासर अफराद का ख्याल कैसे रखा जाता है और नफसियाती मदद कैसे की जाती है।
4: इसमें सबसे पहले जब जिस किसी भी तरह का जब तशद्दुद होता है तो ख़वातीन जो हैं وہ ایک ٹراما کا شکار ہوتی ہیں. سم ٹائمز وہ ان دا لانگ رن سلائٹلی چیزیں بڑھتی بڑھتی یہاں تک لے آتی ہیں کہ ان کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کی وجہ سے بھی سفر کرنا پڑتا ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پریشانی یا اس ٹراما میں رہتے ہوئے اس چیزوں کو سفر کرتے ہوئے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کا شکار ہو جاتی ہیں یا اس سے متاثر ہوتی ہیں, اور ان کو اس وقت اسٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی اور وہ والے سمپٹمز آ رہے ہوتے ہیں جو سم ٹائمز ان کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم نے رپورٹ کیسے کرنا ہے اور اپنی پریشانی کو ظاہر کیسے کرنا ہے. سو اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ٹراما کاؤنسلنگ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر ضرورت ہو تو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کو ساتھ ساتھ مینج کیا جا سکے.
0: اچھا, صنفی تشدد کے متاثرین کو ماہرین نفسیات کے ذریعے ابتدائی طبی امداد فراہم کی جاتی ہے؟
2: جی, ان کی مدد کے طریقے میں سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ متاثرہ فرد یا خاتون پر مرکوز رکھی جاتی ہے. تاہم پاکستان کے شیلٹر ہوم میں 2 سال تک بحیثیت ماہر کام کرنے والی اسامی صاحبہ نے وہاں ایک مسئلے کا بھی مشاہدہ کیا ہے.
1: اچھا, وہ کون سا مسئلہ ہے؟
2: متاثرہ افراد کو خود مختار بنانا ضروری ہے. اسامی صاحبہ نے مجھے بتایا کہ بہت سی ایسی خواتین سے ان کا واسطہ پڑا جو گھر جانا یا دوبارہ شادی کرنا نہیں چاہتی.
0: اچھا,
2: انہیں پتہ چلا کہ گھر چھوڑ کر آنے والی خواتین کو خاندان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی. اس لیے انہوں نے ایک نیا نظام متعارف کیا تاکہ خواتین کے مستقبل کو وسعت دی جا سکے.
5: 結局シェルターの中にいる間っていうのはあのいろいろ精神的に落ち着かないのでなかなか先のことを考えられない。
1: シェルターホームで廃止パゼルアフラードジャスパーティー طور پر کئی قسم کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, لہذا ان کے لیے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا کافی مشکل ہوتا ہے. اس لیے پناہ گاہ سے نکلنے کے بعد انہیں ٹرانزیشنل ہوم یعنی عارضی گھر میں مستقل یعنی منتقل جو ہیں وہ کیا جاتا ہے, جو رہنے کے لیے محفوظ اور مستحکم مقام ہے. وہاں انہیں موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی ذہنی صحت پر توجہ مرکوز کر سکیں, نئے ہنر سیکھ سکتے ہیں. وہاں وہ اپنے لیے مستقل رہائش کا اور روزگار کی تلاش میں مدد حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو ہے ایک ایسا نظام جو درمیانی اور طویل مدتی بحالی اور مدد کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. ہم نے پنجاب حکومت کے محکمہ سماجی بہبود کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے, جس میں نہ صرف پائلٹ اضلاع میں کام کر رہے ہیں بلکہ اسے دیگر اضلاع تک وسعت دینے اور مربوط بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں.
2: یہاں جاپان میں ایسے گھروں کو سٹیپ ہاؤس کہا جاتا ہے, یعنی ایسا گھر جہاں سے بلندی اور ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے.
0: یعنی جاپان میں سٹیپ ہاؤس اور پاکستان میں ٹرانزیشنل ہوم. خلیل صاحب اسے کہتے ہیں سونے پر سہاگا, یعنی خواتین ٹرانزیشنل ہوم میں نہ صرف جسمانی اور ذہنی بحالی کے لیے وقت لے سکتی ہیں بلکہ اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے بھی تیاری کر سکتی ہیں.
1: اچھا, اسامی صاحبہ نے ٹرانزیشنل ہوم میں ہنر سکھانے کی بھی بات کی, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ خواتین کون سے ہنر سیکھ سکتی ہیں اور ان ہنروں کی افادیت کیا ہوگی؟
2: جی, رضیہ سلطانہ صاحبہ جو ہیں وہ ٹرانزیشنل ہومز کی انچارج ہیں. انہوں نے مجھے تفصیلات بتائیں, تو سنتے ہیں پھر انہی کی زبانی.
6: جب ان کو سیف شیلٹر ملتی ہے, ان کو سیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے, تو ان کا کانفیڈنس لیول خود بخود بڑھ جاتا ہے, اور جیسے ہی یہ چیز ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہی ہوتی ہیں, وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, جس سے وہ ریہیبلیٹیشن کی طرف جائیں, خود کمائیں, اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں.
2: اپنے پیروں پہ ان کو کھڑا کرنے کے لیے آپ ان کو کیا خدمات فراہم کرتی ہیں؟
6: ان اس حوالے سے ہمارے پاس پھر ڈفرینٹ طرح کی ٹریننگس ہیں, جو کہ وہی بات ہے کہ سروائیور سینٹرڈ اپروچ کے تحت ہم ان کو دلواتے ہیں. اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہے, اس میں پروفیشنل کوکنگ بھی ہے, اس میں ٹیلرنگ, کٹنگ, اسٹچنگ والی ٹریننگ بھی ہے, اس میں میڈیٹیشن بھی ہے. تو یہ پھر اور جو یہ تو ان خواتین کے لیے جو یہ کرنا چاہیں, اس کے علاوہ اگر پڑھی لکھی خواتین کہیں جاب کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے پھر ہم ان کے لیے جاب کے لیے جگہ بھی دیکھتے ہیں, جیسے کسی پرائیویٹ اسکول وغیرہ میں کروا دی.
0: کسی زمانے میں پاکستانیوں کے لیے بالکل نیا کنسیپٹ اب رفتہ رفتہ قدم جماتا لگتا ہے.
2: بالکل, رضیہ سلطانہ صاحبہ کے مطابق یہاں سے ہنر سیکھ کر ایک خاتون اب شیف ہیں اور کچھ تو ٹیچر بن گئی ہیں, اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے بعد بھی یہ ادارہ ان کی خبر گیری کرتا رہتا ہے.
1: اچھا, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کامیابی کی کہانیاں بھی ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو جاپان سے شرکا جو ہیں, اسے کوئی ایسا جو ہے آئیڈیاز ان کو ملا یہاں پر جو آئے ہوئے شرکا ہیں کہ نہیں, جنہیں وہ پاکستان میں خود آزما سکیں؟
2: جی بالکل, ایسے دو آئیڈیاز کے بارے میں منیزہ صاحبہ نے مجھے بتایا.
4: बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे देखे, इम्प्लीमेंटेशन देखी जो जीबीवी प्रिवेंशन और जीबीवी मैनेजमेंट से रिलेटेड वहाँ सर्विसेज मौजूद थी, अनलर्न का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने मैन इंगेजमेंट और उसको परपेट्रेटर्स की ट्रेनिंग या रिहैबिलिटेशन किस तरीके से करनी है, उनको काउंसिल कैसे करना है, उसकी इंगेजमेंट कैसे रिक्वायर्ड है, कहीं पे भी जहाँ पे एक कंट्रोलिंग बिहेवियर है या एक माइंडसेट है कि हम वी आर सपोज टू कंट्रोल द अदर पर्सन और ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, तो वहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा प्रमोट होती है और ज़्यादा एग्रेवेट होती है, जहाँ पे उस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत होती है।
2: आखिरी दिन तरबियती कोर्स के शुरकान ने अपना एक्शन प्लान या मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल पेश किया और उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने तशद्दुद करने वाले पर तवज्जो मरकूज़ करने की बात की, जिसे विक्टिमाइजर अप्रोच कहा जाता है।
0: वैसे खलील साहब, ये बड़ी इत्मीनान बख्श बात है, जैसे कि रज़िया सुल्ताना साहबा ने कहा कि ख़वातीन को महफूज पनागाह फ्राहम करना तरजीह है, लेकिन इस मसले के हल के लिए वजूहात पर तवज्जो मरकूज करना ही बुनियादी तरीक़ाकार है।
2: जी बिल्कुल, उसामी साहिबा के भी यही ख्यालात हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तशद्दुद या इस्तेहसाल करने वालों तक रसाई जापान में भी एक मसला है।
0: अरे अच्छा,
2: तो उम्मीद है कि दोनों ममालिक तशद्दुद करने वालों के लिए भी कोई प्रोग्राम तैयार कर पाएंगे ताकि सिन्फी तशद्दुद की रोकथाम में मदद मिल सके।
1: बिल्कुल, मैं तो इत्तफाक करती हूँ उस बात से। अच्छा, बाकी जो है वो दूसरा आइडिया क्या है जो उन्हें जापान के दौरे से मिला,
2: तो सुनते हैं फिर मुनीजा साहिबा की ही जुबानी।
4: अगेन वी लर्न द रोल ऑफ बाईस्टैंडर्स, उसमें उनको इंगेज करना और वो इन्फॉर्मेशन और मैसिव अवेयरनेस करनी कि हर बंदे को पता हो। अगेन वी शुड नो द लॉज, वी शुड बी अवेयर ऑफ दी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इन द अक्रॉस सॉरी विद इन आवर विसिनिटी, जो जो सर्विसेज जो जो मौजूद हैं, लॉ कहाँ है, क्या राइट्स हैं, एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ दैट। उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ये कि हम कम्युनिटी में वॉलंटियर्स और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के थ्रू यूथ इंगेजमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को तैयार करें जो कि हमारे एम्बेसडर्स बने और जो साइकोलॉजिकल एटलीस्ट साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें, और हम प्रिवेंशन प्लान के ऊपर काम करें जिसमें हम पर्टिकुलरली जो हमने यहाँ पर चीज़ देखी डेटिंग वायलेंस से रिलेटेड, वो अक्रॉस द ग्लोब दैट इज़ नोन एज इंटरमेट पार्टनर वायलेंस, तो हम उसके ऊपर काम करने के लिए यूथ को प्रिपेयर करेंगे ताकि वो एक प्रिवेंटिव लेवल पे चीजें हम इम्प्रूव कर सकें।
2: इस ट्रेनिंग के शुरका ने ट्रेनिंग के दौरान एक वर्कशॉप में शिरकत की जिसका एहतमाम तलबा रजाकारों और मुलाजमत पेशा अफराद की तंजीम ने किया था, तो वहां से उन्हें बाई स्टैंडर्ड यानी मौके पर मौजूद सुलह की कोशिश करने वाले अफराद के बारे में इल्म हुआ।
1: अच्छा, तो ये अब एक नई इस्तलाह है, यानी इसका मतलब है कि हम भी बाईस्टैंडर हो सकते हैं।
2: जी, और मुनीजा साहिबा ने इस वर्कशॉप से ये आइडिया लिया और उन्होंने महसूस किया कि नौजवान नस्ल सिन्फी तशद्दुद के खात्मे के लिए एक मुहर्रिक क़ुव्वत बन सकती है।
0: मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी कोशिशों का अच्छा सिला मिलेगा और दुआ है कि सिन्फी तशद्दुद के खात्मे का प्रोजेक्ट ट्रांजिशनल होम और उनके नए इकदाम ना सिर्फ पंजाब बल्कि पंजाब से बाहर भी अपने असरात दिखाएं।
1: बस हमारी सबकी यही दुआ है कि इन सब की काविशें ज़रूर रंग लाएं और सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद की शिकार ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि माशरे के हर मुतासर फ़र्द को अमान मिल सके।
2: तो सामीन, दो हिस्सों पर मबनी रिपोर्ट आपने सुनी, आप इस बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए इंतहाई अहम है।
0: और दोस्तों, हम अपनी रिपोर्ट का इख्तिताम केंशी योनेज़ू के गाने सायोनारा माता इत्सु का यानी अलविदा फिर मिलेंगे कभी ना कभी पर करेंगे। ये गाना एनएचके के 2024 के मॉर्निंग ड्रामा तोरा नी सुबासा के लिए लिखा गया था। तोरा नी सुबासा ये एक कहावत है कि शेर जैसे मजबूत किसी किरदार को पर देकर उसकी कुव्वत परवाज को मजीद बढ़ाना।
1: मैं बताती चलूं कि सीरीज की मरकजी किरदार का निक नेम तोरा चा है, जो जापान की पहली खातून वकील से मुतासिर होकर बनाई गई। ये उस औरत की कहानी है जिसने शोवा के हंगामा खेज दौर में अपने साथियों के साथ मिलकर कानूनी दुनिया में एक ऐसा रास्ता बनाया जो पहले मौजूद ही नहीं था।
0: तो आज की रिपोर्ट की मुनासिबत से गीत सुनते हैं सायोनारा माता इत्सु का, आइए सब मिलकर लुत्फ उठाएं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानो का कोनिचिवा नमस्कार।
1: सभी साथियों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब और जापान में साइकिल से जुड़े ब्लू टिकट चालान पर एक रिपोर्ट।
0: रोहिणी जी, देखिए अभी जापान में लंबी छुट्टियों का सिलसिला रहा, आप कहीं घूमने गई थी क्या?
1: नहीं, ऐसी छुट्टियों में हर जगह भीड़भाड़ ही रहती है, इसलिए ज्यादा कहीं गए तो नहीं।
0: अच्छा।
1: लेकिन हाँ, एक दिन पार्क में मैंने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने जापानी एनिमेशन के किरदारों का वेश धारण किया हुआ था। शायद कोई मेलजोल का कार्यक्रम रहा होगा इन लोगों का, तो मैं उन लोगों को कुछ देर तक देखती रही। और ये वेशभूषा इन्होंने कहाँ से खरीदी होगी या फिर खुद बनाई थी क्या, सोचती रही।
0: अच्छा, हाँ इसे कॉस्प्ले कहते हैं और इसकी धूम जापान तक ही सीमित नहीं है, दुनिया भर में कॉस्प्ले के आयोजन होने लगे हैं और भारत भी कहाँ दूर है।
1: अच्छा, ऐसा है क्या?
0: हाँ, और पता है इस साल वर्ल्ड कॉस्प्ले समिट में भारत की जोड़ी ने प्रथम स्थान हासिल किया। बहुत अच्छा कॉस्प्ले था उनका, हालांकि वे कौन से किरदार बने थे ये मैं नहीं कह सकती।
1: मैं तो खुद कभी हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन जो लोग करते हैं उनके शौक को सलाम है।
0: सही बात है। और श्रोताओं, अगर आपको भी कॉस्प्ले में रुचि है या जानना चाहते हैं कि ये कॉस्प्ले क्या है, तो हमारी वेबसाइट पर एक लघु वीडियो है एनिमे जापान 2026 में कॉस्प्लेयर्स की धूम। टोक्यो में इस वार्षिक एनिमे आयोजन में जापान और दुनिया भर के कॉस्प्लेयर्स ने हिस्सा लिया।
1: अच्छा, ये तो मैं भी देखना चाहूंगी।
0: हाँ, जरूर देखिए और फिर बताइए अपनी राय हमें।
1: जी।
0: और अब देखिए वक्त हो रहा है श्रोताओं के पत्र लेने का, तो शुरू करते हैं खतों का सिलसिला।
1: जी हाँ, तो सबसे पहले यह पत्र है मोहम्मद सादिक आजमी जी का। उन्होंने 12 अप्रैल के कार्यक्रम के बारे में लिखा है कि इस अंक में पत्रों को प्राथमिकता दी गई, यह सुखद एवं संतोषजनक है, यह क्रम जारी रहेगा यही आशा है। समय से पहले मौसम में बदलाव कोई आम बात नहीं है, जापान के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर गंभीरता से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम मनुष्य ही इसके मुख्य जिम्मेदार हैं। कारखानों से निकलने वाले हानिकारक धुएं, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, आधुनिक विकास के नाम पर फैक्ट्रियों से टनों टन पानी को दूषित करते कचरे प्रकृति के सभी नियमों को तार तार करते जा रहे हैं। ऐसी दशा में ये बदलाव स्वाभाविक है, आवश्यकता है इस ओर विशेष ध्यान देने की।
0: अच्छा, ये शायद उस अंक की बात करें जब हमने बात की थी ना कि समय से पहले ही इतनी गर्मी हो गई है, तो यही मोहम्मद जी की टिप्पणी है।
1: हाँ, आगे लिखते हैं कि भाई चिन्मय महतो जी रेडियो प्रदर्शनी के आयोजन में 1000 से अधिक रेडियो को एकत्रित कर इतिहास बना रहे हैं, हम उनके इस अनूठे कार्य हेतु बधाई प्रेषित करते हैं।
0: चिन्मय जी के संग्रह को देखने का तो रोहिणी मेरा भी बहुत मन है।
1: जी,
0: चिन्मय जी ने कहा था कि वो अपने संग्रह की तस्वीरें भेजना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो चिन्मय जी, ईमेल में फोटो अटैच करने की व्यवस्था जो है उपलब्ध है, आप वीडियो भी भेज सकते हैं तो हमें जरूर भेजें।
1: जी, और मोहम्मद जी आपके पत्र के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि हर पृथ्वीवासी को अब प्रकृति के बदलावों की ओर संवेदनशील होकर अपने निजी स्तर पर कदम उठाने होंगे, तभी कोई बात बनेगी।
0: सही कहा। और अब देखिए ये अगला पत्र है RS विजय कुमार जी का। लिखते हैं, मेरे पूज्य पिताजी की तबीयत बिगड़ गई, ओहो, जो 92 वर्ष के हैं। मुझे उनके स्वास्थ्य संबंधी हालात पर ध्यान देना पड़ा, जिस कारण आप लोगों से पत्राचार करने में विलंब हुआ। हर शनिवार को प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य सरिता पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। साहित्य सरिता वास्तव में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसमें प्रसारित कहानियां जापानी समाज की एक प्रतिबिंब की तरह हमारे मन मस्तिष्क में समा जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गिनी चुनी 5-6 कहानियों को कई बार पुनः प्रसारण किया जा रहा है। आखिर कब तक हम उन कहानियों को सुनते रहेंगे? हम श्रोता भले ही बहुत पुराने हैं, जो 40-50 वर्षों से लगातार आपके कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नया सुनाइए। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहूंगा कि जापान रेलवे जर्नल जैसी सूचनाप्रद एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस को हिंदी सबटाइटल्स के जरिए सीधे पोस्ट करने के बजाय अगर वीडियो को हिंदी का स्वर देकर वाचन करें तो विषय वस्तु और बेहतरीन तरीके से श्रोताओं की समझ में आ जाएगी। हाल में मैंने हिंदी फेसबुक पेज पर जापान रेलवे जर्नल के अंतर्गत रेलवे एवं एआई मास ट्रांस इनोवेशन 2025 प्रदर्शनी की संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से देखने का सुअवसर मिला। सचमुच ये प्रदर्शनी अपने आप में अनोखी थी। भविष्य में एआई का सदुपयोग करते हुए रेलवे की मरम्मत, रख रखाव, लेवल क्रॉसिंग पर सुनिश्चित सुरक्षा तथा यात्रियों को त्वरित एवं बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने का जापान रेलवे कर्मचारियों और कंपनियों ने संकल्प लिया है।
1: विजय कुमार जी, आपके पिताजी का स्वास्थ्य अब बेहतर हो गया होगा, इसकी आशा करते हैं। आपने खुलकर अपने मन की बात हम तक पहुंचाई, इसके लिए धन्यवाद। साहित्य सरिता वास्तव में बहुत पसंद किया जाता है और हम चाहते हैं कि इसके तहत नई नई कहानियां आप तक पहुंचाएं। लेकिन असल में इसकी नई कड़ियों को बनाना बंद कर दिया जा चुका है, इसलिए पुराने अंक सुनवा रहे हैं।
0: जी हाँ, और नए अंक बनाना कब आरंभ होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आपकी और अन्य श्रोताओं की ये टिप्पणी हम अपने अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं ताकि उन्हें जानकारी हो जाए कि श्रोता कितने मन से कहानियों का इंतजार करते हैं। और जापान रेलवे जर्नल का आप पूरा आनंद ले रहे हैं, इसके लिए आभार। इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए और क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इसका सुझाव देने के लिए धन्यवाद। हम भी अपने स्तर पर इस मुद्दे पर विचार करना चाहेंगे।
1: अब अगला पत्र है प्रदीप बसाक जी का, पूर्व वर्धमान पश्चिम बंगाल से। लिखते हैं, 10 अप्रैल के फेसबुक पोस्ट पर देखा, जापान के कागावा प्रिफेक्चर के अंतर्गत स्थित शिशिजिमा द्वीप पर वसंत से लेकर ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ तक फैली फूलों की अद्भुत छटा वास्तव में प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। मेरा मत है, सबसे पहले यह पहल प्रकृति और पर्यटन के बीच एक संतुलित एवं सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती है। मितोयो शहर में सेतो अंतर्देशीय सागर की पृष्ठभूमि में सजी रंग बिरंगी फूलों की कालीन न केवल दर्शक

0: को आकर्षित करती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाती है। दूसरा, यह आयोजन हमें सिखाता है कि किस प्रकार योजनाबद्ध प्रयासों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के साथ एक छोटे से द्वीप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकता है। और तीसरा, पर्यटकों के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि यह दृश्य केवल देखने में ही सुंदर नहीं बल्कि मानसिक शांति और सुकून का भी स्रोत है। आज के व्यस्त जीवन में इस प्रकार के प्राकृतिक स्थल लोगों को आंतरिक संतुलन प्रदान करते हैं। यह दिखाता है कि प्रकृति के प्रति प्रेम, देखभाल और सही योजना से किस प्रकार असाधारण सौंदर्य का सृजन संभव है। आशा है कि भविष्य में भी यह सुंदरता बनी रहेगी और अधिक लोग इस अद्वितीय अनुभव का आनंद ले सकेंगे।
1: प्रदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रकृति को सहेज कर संजो कर रखने से असाधारण सौंदर्य का सृजन संभव है। अपने आसपास साफ सफाई रखना, फूल उगाना और अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट पेड़ पौधों और वनस्पतियों, जड़ी बूटियों को संजो कर रखने से उनका बड़ा महत्व है। इंसान भी प्रकृति का एक अंग है, एक हिस्सा है और हमें प्रकृति के सभी पहलुओं के साथ तालमेल बिठाकर ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो।
0: देखिए, अभी सादिक आजमी जी ने भी इसी की ओर इशारा किया था कि इंसान जब तक प्रकृति की अनदेखी करता रहेगा उसे इसके दुष्प्रभावों को झेलते रहना पड़ेगा। समय आ गया है कि अपने आसपास के नदी नालों, नहरों को कचरा मुक्त रखें और एक स्वस्थ वातावरण को जन्म दें।
1: बिल्कुल सही कहा रोहिणी जी आपने। और अब देखिए, वक्त हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो श्रोताओं नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में।
1: रोहिणी जी, ये बताइए कि साइकिल से आपकी कैसी कैसी यादें जुड़ी हुई हैं?
0: साइकिल का जिक्र होते ही बचपन की यादों का पिटारा खुल जाता है।
1: अच्छा।
0: मैं तो स्कूल साइकिल पर जाया करती थी। पहले तो हाफ पैडल चलाना सीखा था, फिर अभ्यास करते करते आराम से सीट पर बैठ के साइकिल चलाने लग गई थी। कभी कभी तो साइकिल चलाने की धुन में घर लौटने में देर हो जाती थी और खूब डांट पड़ती थी।
1: हाँ, अच्छा। वैसे भारत के शहरों में कार का चलन और सड़कों पर भीड़ बढ़ने के साथ साइकिल चलाना आजकल कम हो गया है, परंतु यहाँ जापान में तो आज भी साइकिल चलाई जाती है। असल में तो जापान में रहने वालों की दिनचर्या साइकिल के बिना अधूरी है। सुबह बच्चों को नर्सरी या डे केयर पहुँचाना हो या आसपास से राशन पानी लाना हो, कई लोग ये सारे काम साइकिल से ही करते हैं। छुट्टी के दिन आप एक पूरे परिवार को अपनी अपनी साइकिल पर सवार होकर बाजार, पार्क, संग्रहालय या अन्य जगहों पर जाते देख सकते हैं, है ना?
0: जी। अरे, मैं तो जापान आकर इतनी भांति भांति की साइकिल देखकर चौंक गई थी।
1: अच्छा।
0: जी, खासकर यहाँ की मामाचारी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मम्मी वाली साइकिल कह सकते हैं। साथ ही बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक साइकिल भी होती है। इन पर आगे और पीछे बच्चों को सुरक्षित बैठाने के लिए खास सीटें भी लगी होती हैं। ये साइकिलें ऊबड़ खाबड़ चढ़ाव या ढलान वाले रास्तों पर बड़ी आसानी से चल जाती हैं। यह सब देखकर मुझे यह एहसास हुआ था कि जापान ने तूफानी बुलेट ट्रेन भले ही चला ली है, पर जितेंशा यानी साइकिल की सवारी को भी संजो कर रखा है।
1: ये तो आपने खूब कहा। और साइकिल चलाने के फायदे भी तो बहुत हैं। देखिए, सेहत के लिए अच्छी है, पर्यावरण के लिए फायदेमंद है ये दो पहिए की साइकिल। पर सुनने वालों को ये तो बताइए कि आज हम साइकिल की बातें क्यों कर रहे हैं?
0: जी, अभी बताती हूँ। असल में जापान में साइकिल के चलन के साथ साथ बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण पिछले साल यह तय किया गया था कि साइकिल चलाने में लापरवाही को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इसलिए पहली अप्रैल से नया ब्लू टिकट चालान लागू किया गया है। अगर आप मोबाइल देखते हुए, हेडफोन लगाए हुए या छाता पकड़कर साइकिल चलाते हैं

0: ब्लू टिकट मिलेगा और निर्धारित जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। इस नए ब्लू टिकट सिस्टम के तहत नियम उल्लंघन के स्तर के अनुसार 5,000 से 12,000 येन तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, यानी करीब 2,500 से 6,000 भारतीय रुपए। और सबसे बड़ी बात, अगर जुर्माना नहीं भरा तो आपराधिक केस भी दर्ज हो सकता है।
1: जी हाँ, मैं कुछ और नियम जोड़ दूं इसमें। देखिए, जैसे ट्रैफिक लाइट की अनदेखी करने, बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करने और सिद्धांतिक रूप से फुटपाथ पर साइकिल चलाने पर भी ब्लू टिकट कट सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये नियम आपको क्यों बता रहे हैं, तो वो इसलिए कि जापान आने वाले सैलानियों के लिए भी किराए पर लेकर साइकिल चलाने की सुविधा है। अब अगर आप जापान घूमने आए तो आपको इन नियमों की जानकारी तो होनी चाहिए ना। बस इसीलिए इन सारे नियमों की पूरी जानकारी हमने NHK वर्ल्ड हिंदी की वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी डाल दी है।
0: जी, ये नियम सख्त लग सकते हैं, लेकिन ये सख्ती लोगों की जान बचाने और पैदल चलने वालों, खासकर कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ही है। सड़क दुर्घटना एक चिंता का विषय तो है। आगे और जो बता दूं कि हाल में आए NHK के रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के महीने में पूरे जापान में 2,147 टिकट जारी किए गए।
1: अच्छा, इतने सारे?
0: जी, इसमें सबसे ज्यादा 846 ऐसे मामले थे जिसमें लोगों ने स्टॉप लाइन पर पुलिस की चेतावनी के बावजूद उन्हें उल्लंघित किया।
1: अच्छा
0: जी। और वायला जी, 713 मामले स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए साइकिल चलाने वाले थे।
1: अच्छा।
0: और 298 मामले में ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी की गई थी।
1: अच्छा, तो ये है। तो श्रोताओं, अगर आप भी भविष्य में जापान घूमने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ की मशहूर बुलेट ट्रेन की सवारी और खूबसूरत मंदिरों के दर्शन के साथ साथ यहाँ की सड़कों पर साइकिल चलाने का अनुभव जरूर लें। बस ध्यान रहे कि ट्रैफिक नियमों का पालन पूरी तरह से हो और आपकी साइकिल की घंटी बेवजह ट्रिंग ट्रिंग ना करे।
0: अरे, हम लोगों ने तो साइकिल की घंटी के बारे में बताना ही भूल गए हम लोग।
1: जी जी, बताइए।
0: जी, यहाँ आपको साइकिल की घंटी भूले भटके ही सुनाई देती है। फुटपाथ पर पहला अधिकार पैदल चलने वालों का होता है और उन्हें हटाने के लिए घंटी बजाना बहुत ही असभ्य माना जाता है।
1: अक्सर सुनाई नहीं देती है ना।
0: जी,
1: बहुत कम होता है ना कि कोई बजा रहा हो घंटी।
0: मैंने तो कभी भी नहीं सुना।
1: अच्छा।
0: धीमी गति में नजदीक जाकर अगर थोड़ा सुमिमा सेन, यानी माफ कीजिए, बोलना ही काफी होता है और आपको रास्ता मिल जाएगा।
1: हाँ, ये बात तो आपने सही कही। तो रोहिणी जी, आप चला भी रही हैं ना साइकिल जापान में?
0: हाँ, मैं तो चलाती हूँ, मेरे आसपास के काम के लिए बहुत ही जरूरी है।
1: ठीक है, तो हमें विश्वास है श्रोताओं कि आपको जापान में साइकिल चलाने के विषय में काफी जानकारी मिल गई होगी। और अब हम जानना चाहेंगे कि साइकिल से आपकी कैसी यादें जुड़ी हुई हैं, तो संदेश भेजकर हमें बताना ना भूलें। हमें आपके संदेशों और विचारों का इंतजार रहेगा।
0: आइए अब साइकिल से ही जुड़ा एक गीत सुनते हैं। शीर्षक है जितेन शाह, यानी साइकिल, और गाया है जूडी एंड मैरी ग्रुप ने।

0: अब समय हो रहा है दोस्तों आपसे इजाजत लेने का, तो फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को
1: और रोहिणी रमन को।
0: सायोनारा, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुनें, कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: यह है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना के सामीन को आदाब। आज हम गुज़श्ता हफ्ते नशर करदा रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा नशर करेंगे।
0: पहले तो रिपोर्ट के गुज़श्ता हिस्से का मुख्तसर तारीफ मुझसे सुन लीजिए।
2: गुज़श्ता हफ्ते हमने जिक्र किया था कि अवाखिर अप्रैल में पाकिस्तान से महकमा समाजी बहबूद हुकूमत पंजाब में सिंफ की बुनियाद पर तशद्दुद के मसले से निमटने वाले 11 अफसरान जापान बैन अल-अक़वामी तआवुन एजेंसी जायका के ज़ेर-ए-एहतमाम ट्रेनिंग कोर्स में शिरकत के लिए जापान आए थे।
1: जी सामिन, आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते हमने जाना कि जापान और पाकिस्तान दोनों मिलकर पाकिस्तान में सिन्फी तशद्दुद से निमटने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं।
0: और रिपोर्ट से हमें पता चला कि मुतासरीन के आदाद व शुमार क्या हैं और सिन्फी तशद्दुद की समाजी और नफसियाती वजूहात क्या हैं। और अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसी मौजू को आगे कैसे बढ़ाएंगे खलील साहब।
2: जी बिल्कुल, आज इस दूसरे हिस्से में सिन्फी तशद्दुद के मुतासरीन की इमदाद के हवाले से हम बात करेंगे। तो राबिया उस्मान साहिबा जो हैं वो लाहौर की डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, वो भी जायका के ज़ेर एहतमाम इस तरबियती कोर्स में शरीक थीं। तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि सिन्फी तशद्दुद से मुतासर मर्द या खातून उनके इदारे से राबता कैसे कर सकती है और ऐसे अफराद को उनका इदारा क्या मदद फराहम करता है। तो उन्होंने मुझे बताया,
3: हमारा जो सेंटर है वो वॉक इन सेंटर है 9 बजे से लेके 5 बजे तक, और वो उनको किसी पेपर या अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मुसीबत का शिकार है तो वो हमारे दफ्तर आएँ और हमारी पूरी टीम है वो अपना मसला बताएं और हम साथ ही उनका काम टेकअप कर सकते हैं। सर्विसेज जो है हमारी वो ये हैं कि उसमें सबसे पहले काउंसलिंग है, उनको उनके राइट्स के बारे में बताया जाता है। अगर उनकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उनको फौरन जो है मेडिकल लीगल एग्ज़ाम है, FIR रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट एड है, वो चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो भी तशद्दुद का शिकार ख़वातीन को मदद चाहिए होती है, जैसे उसको उसके कानूनी राइट्स का बताना है, कानूनी हकूक़ का बताना है, वो हमारे लिए हमारे पास वकील मौजूद हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो उनका इनिशियल उसका सेशन करती हैं कि क्या ये बहुत डिप्रेस तो नहीं है, क्या ये अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगी, क्या ये फैसला लेने की पोजिशन में हैं। तो वो सब इनिशियल जितनी भी सर्विसेज हैं साइकोलॉजिस्ट की, लॉयर की, काउंसलर की, वो सब उसको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर उसको शेल्टर चाहिए, रहने के लिए महफूज जगह चाहिए, तो उसके लिए हम उसको शेल्टर में भी रेफर करते हैं। और हमारा एक 1737 हेल्पलाइन है, और उस पर कॉल करती हैं वो, और वो जो भी मशवरा है, काउंसलिंग है, एडवाइस है, उन्होंने अपना मसला शेयर कर